नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को, और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ज़ोय 100.7। दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी गई होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने आज की सुबह, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की होगी, क्योंकि हमें क्योंकि हम बहुत लकी हैं दोस्तों। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें दोबारा एक नया दिन समय मिल जाता है दोस्तों। इस नए समय दिन को हमें बहुत ही अच्छे और एन्जॉय के साथ, खुशी के साथ दोस्तों निभाना चाहिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए अच्छे से बीते, और हमारे साथ अगर आपको समय मिलेगा तो हमसे बातें करिएगा, क्योंकि FM ज़ोय 100.7 पर हम आपका इंतज़ार करते हैं दोस्तों। आपके संदेश के बिना हमारा ये जो FM ज़ोय 100.7 है ना दोस्तों, बहुत अधूरा रहता है। तो आप है तो सब कुछ है, ठीक है? और तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सबसे पहले हिंदी के खंड पे, और आपके साथ हिंदी के खंड में जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, है ना? आपकी सेहत भी अच्छी होगी, और शायद आप अभी जा रहे होंगे, रास्ते पर होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, तो आप जो भी करेंगे आप अच्छे से करेंगे, है ना दोस्तों? तो आइए, चलिए, भागती जिंदगी बिजी लाइफ को छोड़ के, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा समय FM 100.7 को दीजिए, हमें सुनिए, तो हमारे साथ डूब जाइए FM 100.7 पर दोस्तों, हिंदी के खंड पे। और तो सबसे पहला मैं इस खंड में आप सभी को सुनाना चाहूंगी कुमार सानू के आवाज में गाया गीत, प्यार कोई खेल नहीं। मैं चाहती हूँ दोस्तों कि हम किसी के दिल से ना खेले, क्योंकि प्यार बहुत ही अनमोल है। प्यार हमें वो सारी खुशियाँ देती है जो जो हमें चाहिए होता है, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए, फिलहाल सुनते हैं मेरी तरफ से प्यार कोई खेल नहीं।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत प्यार कोई खेल नहीं आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, इसलिए दोस्तों किसी के दिल से मत खेलिए। यस, अगर आपको बेहद उनसे प्यार है तो अपने प्यार का मतलब अपने प्यार को निभाइए मरते दम तक, ठीक है। अगर जैसे कि आप प्यार प्यार इजहार करने के बाद अगर आपको वो

Well, दोस्त उम्मीद है आप सभी को कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत मेरा दिल भी कितना पागल है दोस्तों आप सभी को जरूर पसंद आया होगा. यस, अब हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है. यस, कुमार सानू और अलका याग्निक के ही बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी

दोस्तों के लिए और अमेरिका सांगते हियान तो ना आर जे ही ओ इ प्ले तोरते इतान ले गाइ लतुते तान अरोंती नि अचुंग ल पंगा छु छार तोलो मे यांग ओ नोम ए मे कंथि मामा गा अतक तक मोही कन लो तिले छिनंगा तरो स्वान मैं मोई ते ह्यान वाला नमस्ते, आपको भी नमस्ते, मैं मोई ते आप कैसे हैं? जो जी नॉमले, ओले, थैंक यू, पेंग पोंग तका ओम हुन ओम नुआ, लमो एम एम गई थाक चू अमन लात, गई थाक चू मन लात तका नी हरों त्या नी, वन लोम ओम, वार दे विन चोई लो ए थे या, ती चुआन, तो ना चुआन, एंग किम, खा थे हिलिन ओ एफएम जो ओ 100.7 आ इरन लेंग लु चार चार तो दोन तानी तरो वन नाम तक एम तो हम आपका स्वागत करते हैं मिंग मोइते एफएम जो ओ 100.7 पर हिंदी के खंड पे यस और जैसे कि आप सभी जानते हैं युनचेता वंगा आज लाइव शो होगा दोबारा मतलब एवरी मंडे मिजो सेगमेंट पर मतलब यस 10:40 पर आरजे आपकी आरजे लवली आरजे ब्यूटीफुल आरजे लाइव शो रनने ले दोन अनिका ओ आप सभी को ज्वाइन करना है ढेर सारे कमेंट्स भेजना है यस ठीक है तो मत भूलना 10:40 पर लाइव प्रोग्राम होगा हमारे पेज पेज मतलब एफपी के हमारे पेज ओलिंडा रेडियो आइजोल पर आप लाइव से देख सकते हैं आपकी आरजे लोमी को यस तो चलिए हम भी चलते हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है यस दोस्तों जिंदगी में हमारे रिश्ते में कोई मतलब कभी ऐसा दरार गुस्सा ये सब चीज़ें आने से भी दोस्तों उन चीज़ों को अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए ये हम मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं और दूसरों के पास ऐसा नहीं होता है प्यार ठीक है बस आप अपने प्यार को इस ऐसा मजबूत बनाने के लिए कोशिश कीजिए जो आप ज़िंदगी भर खुश रह सके यस खुश रहना तो मुश्किल होता है लेकिन हमें मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो निभाने के बाद एक जिम्मेदारी की चीज़ भी होती है दोस्तों अपनी ज़िम्मेदारी को आप याद रखिए यस मत भूलिए अपनी ज़िम्मेदारी को तो इस तरह आपका प्यार हमेशा यस बढ़ता रहे जिंदगी भर तो चलिए अगला गीत सुनाना चाहूंगी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है मेरी तरफ से आपसे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते, आप सभी का मैं दोबारा हिंदी के खंड में स्वागत करती हूँ दोस्तों। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों। और आप सभी ने आरजे लोमी के साथ FB के हमारे पेज और इंडिया रेडियो पर उनको देखकर उनके खंड पे आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। और हम भी हाजिर हैं दोबारा आप सभी को हिंदी के गीत सुनाने के लिए। और हम चाहते हैं कि आपका समय यूं ही अच्छे से बीता रहे। और हम यही तो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। FM 100.7 हम सभी हर रोज, हर समय, हर पल आपको आपके समय को अच्छा बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर हाजिर हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी इस FM 100.7 की दुनिया में डूब जाइए और हमसे बातें करिए दोस्तों। आपके बिना हम अधूरे हैं, ये बात कभी मत भूलना, ठीक है? तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं अपने इस हिंदी के खंड को। और सुनाना चाहती हूँ आप सभी प्यारे दोस्तों को इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से, मोहब्बत दिल का सुकून। मोहब्बत दिल का सुकून। सुकून, अगर हमसे कोई पूछे कि सुकून के बारे में, तो हम कहेंगे कि मोहब्बत ही तो सुकून है, सब कुछ है। तो जब तक जिंदगी चलेगी तब तक प्यार होगा, मोहब्बत होगी, तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। तो चलिए मेरी तरफ से ये इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मोहब्बत दिल का सुकून गीत सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है ना दोस्तों। यस, मोहब्बत में कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी पाना है, कभी खोना है दोस्तों। यस, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों को कसम खा के कहो, बहुत ही खूबसूरत गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के ही आवाज़ में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ हिंदी के खंड में हिंदी के गीतों को सुनकर, यस कसम खा के कहो, आप सभी को गीत पसंद आया होगा दोस्तों। यस तो प्यार में कभी कभी कसम खाना भी पड़ता है दोस्तों। अगर वो हमसे मतलब रूठ जाते हैं तो कभी कभी कसम खाना पड़ता है, और अगर कसम खाने की नौबत आएगी तो आप पीछे मत हटिए, क्योंकि कसम खाना कोई बुरी बात भी नहीं होती है, है ना। तो चलिए अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, और अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश को पढ़ना चाहूँगी। मोया साइटलो हियान आर्चे वी एल कुंग वी कुंग ते आप इसी जेसिका ngori sai lo fitness boy te tan le nang mata na ron ti a ole an lo she tur anga ila tro moya chuan meng moi te hian van lal kalo me a ron ti chuai me a eng wang chuan nge o tu na la a eng ber ka play wang khan nge o niang a ma sa ber khan mohabbat til ka sukoon ni a chumi zawa

kasam kake ka ho kan nili a akoi akoi ber kan ye du khale o meng moi te mi lo shil vela ole chuan zam hian arje vi ali mo uma luang a mission veng le arje nung nung ite nu pa po anin siam har lo to pang nu pa uma luang a mission veng le arje nung nung te te nu pa a po anin siam har lo to pang le anin du ton na po a chav chau via we next song itan le nu pa a in siam mai tur ji arje nung nung te le uma luang a mission veng tan po sial big riawi no ron tani zam hian o ban poi tak zam an om lo hello wa om pe se chuan o no man ting o tang chuan good boy hian a ji ban la ka la om pui reng che on na om pa in sms lo lut lem do em mi Oh, kan hak ve deu chin solo mo chan a ma sa zoka hian RJ van lal RJ lom te life a life ka a luin mu anua hla play anal lom box si I lo lang ve lava eng tika nge lo life le don lom te le nung nung I ka min lo biak ro o van lal ron ti a good boy hian ole hey an lo an chuak loka ni hi khoi ange manin kan le ni oh kina anrun thlen vele kalo shil don nia o chuan life chung chang kha chu ni e ka she ka sui thei cha lo good boy o min lo ngak sham sham don nia o chuan to chali feel hal chalte hain agle geet ki taraf aur agla geet main sunana chahungi aap sabhi pyare doston ko yes मैं गीत सुनाना चाहूंगी आपको दुख वाला गीत तो मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आज मतलब मूड ऑफ करने का मूड नहीं है यस इंच ध्यान में आज मूड ऑफ करने का मूड नहीं है ठीक है कन मूड कन थी ऑफ पे लाओ तीना नहीं समो ओ तो चलिए मैं एक प्यार भरा गीत सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को यस ये गीत है बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत यस बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरह तुम भी प्यार कर लो मेरी तरफ से आप सभी के नाम

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी तरह तुम भी प्यार करके देखो ना। यस, किसकी तरह? प्यार करने वालों की तरह। यस। तो चलिए, आप यूं ही एक दूसरे के साथ प्यार करते रहिए दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार यूं ही बरकरार रहे हमेशा, जिंदगी भर दोस्तों। और हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था आज, कि प्यार कोई खेल नहीं है। आप किसी भी रिश्ते से, दिलों से, किसी से भी आप मत खेलिए, उनके उनके दिल से भी मत खेलिए। यस, मतलब प्यार करना कोई मजाक चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये बात हमें समझना चाहिए। नहीं, ते में मैं थी, ते में मैं ची निलाओ मो इन फ्याम ना ची पो निलावा मो चुवांगिन मंगाई नहीं थी, सीरियस नहीं आ ओ सत्यावेन सुनी मो। और आपके भेजे के संदेश की तरफ चलते हैं। एलबी रन खेन आर जे वी एल इपले ली सन्नल है मैं इपले ले तुर खा आर जे मामो इतान ले सोल फथंगा रोपोई छीप ते तान ओ तुकिन चू इनुई तम वक लो इमु द फू वक लो ने इनुई तम इनुई तम हियान अनुआ मनिया इनुई री अमोई इनुई री मोल मई खा एलबी रन खे ही इचिन है मई नो नुई ही आहारनी मो नुई रंग ही आहारनी ओ बाका इन रे ही चुआन नुई ही आहार ले जुआल बोका मोम इन मेसेज थोन दान नजर ते पो हिया ना निचीन बोका मोम कुंते हिया ना जे मो वील निचीन खान हिंदी आ अनमो अनमोल इति इति नी खान इति इति इन कशिया आ ओम जा ए रो कशेलवा मोल मिंती ना अनि मैं ये कुंते कनुई चाक लाओ वो इन सुमो कनुई पे लाओ मिन मी ती नुई चाल तुम सो अनमोल मोल मोल के दिलाओ चे ओ अनमोल मो अनमोल ती ना चुलू ती ना chuan ming moi te hian vanlal please in en chiang o kala en chiang o kala o me katia e o kala o kala o me kala o me tin kala o chiar ni mo kala o me ti kha o a mak thai a ven zu ge chiang lao ta tin ge xia ke ma hi o सोन अगला गीत मोया साइड लौटा न रोंटे पुकनी मेग मोइते हियान। तो चलिए एलबी रेंटले की तरफ से जो उन्होंने संदेश भेजा है, हम ट्राई करते हैं हंसने का। यस, तो आप भी अच्छे अच्छे खूबसूरत मतलब मीठे मीठे संदेश भेजकर हमें मुस्कुराने के लिए ट्राई कीजिए दोस्तों। कभी कभी मुस्कुराना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। यस, कभी हम मतलब हमेशा तो मुस्कुरा नहीं सकते, है ना दोस्तों? तो चलिए, फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को पहली पहली बार मोहब्बत की है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आ रहा होगा। पहले पहली बार मोहब्बत की है। और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, और अगला गीत होगा कबूतर जा जा। यस, ये गीत तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना? यस, और यहाँ पर माटवांगा मिशन व्यंग्यन केत्सु जिल जामन आर जे वी ली मैसेज थो न फल तो बोक्सी लवर ऑन दिटलात मया अनि मिया जाम अनि पोक रिंग लो तरो मिरन थन दु लो वांग चोक अनि यांग तरो जामा हन पु दै मया चान जामा ह्यान आर जे वी एल तो किन सु शिंग नुन अंगवाई रियाउ मई अंग ओ नाम दे विन ओ रोंतिया ओ ngoi lawe zam pa ngai ve khani o nama kha enge equal zok m kul kha ka phal nya law nya o chuan good boy hian aron oi aron siak nem khop maya ma sa ka char chak lo mayang good boy o chuan pa he chai kan char tiang chuan pa vi kong tia le midang tehi RJVLi chuan mol min ti hlom ani mo vuina lang ho chu ron tile dai maya tilave a ole to filhal chali hum agle geet ki taraf badhte hain. Agla geet hoga meri taraf se aap sabhi pyare shrotao ke liye, aap sabhi pyare doston ke liye, kabutar cha cha. Yes, meri taraf se aap sabhi ke naam.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ इस खंड में हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को पसंद भी आया होगा। दोस्तों, यस, आप सभी से अब मेरा अलविदा कहने का समय आ चुका है। एक आखिरी गीत सुनाकर

235 पर आप सभी को अजय विल की तरफ से ये इस खंड का आखिरी गीत और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को. और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ZOY 100.7. दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के खंड पे, यस, आज के हमारे आखिरी खंड पे, यस, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ. यस, आप सभी के प्यार भरे संदेश का भी इंतजार रहेगा दोस्तों. और आप सभी का दिन कैसे बीता दोस्तों? यस, हमें उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से बीता होगा. और आज के इस 2:30 बजे से 3 बजे तक का समय आपके लिए हम बहुत ही अच्छे से समय बिताने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ नए गीतों के साथ, कुछ हिंदी गीतों के साथ दोस्तों. तो आइए, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे खंड, हिंदी के खंड पे. और सुनते हैं सबसे पहला इस खंड का गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए. गीत सुनाना चाहूँगी, यस, सुकून गीत से मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूँगी दोस्तों. और ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतज़ार रहेगा, ठीक है?

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सुकून इस खनका सबसे पहला गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा और हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का समय यूं ही अच्छे से बीता रहे दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। बहुत ही खूबसूरत गीत, और लेकिन आपको गीत सुनाने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। आपने संदेश भेजा है या नहीं भेजा, चलिए चेक करते हैं। यस, तो यहाँ पर संदेश आया है। केवाला ज्ञान RJVL in Ripei to Emle Rantiani. Buen su Ripei MM lo ani bere to me yang. Chan Zama yan RJVL mal ka so mol mol ache. Kala du berne buli ron chan a iron chan avangin plong dakin ho ang se o kwanu mal som na tam tak dong intrisiana chanin he fm zo o rimoy ru na kanin ton le twai kanin tong le twai don nya next song itan zo aron diani achan bazam he zo fel chin le me o le twa nong po i ho do na plong da bin i ho don nya o chuan kung de hian arjamo vl ka ujila zama kamo tuwait lang val kevala i nen anin kop anti kalong puiti FM kalsangin karon soye magtay eh kung te tunla hi til soye o chan fitness boy ki taraf si sandesh aya he or lekin main inka sandesh is agle git ke sunane ke baad padhna chahungi. Yes, मेरे ख्याल से वो डिलीट नहीं करेंगे शायद। तो सुनते हैं तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आपके सभी के।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब हम अगले गीत की तरफ चलेंगे। अगला गीत होगा मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो, ये गीत बहुत ही हार्ट टचिंग वाला गीत है, तो आपको भी ये गीत जरूर पसंद आएगा दोस्तों, आपको सुनने में अच्छा लगेगा शायद। तो यहाँ पर केवल अहियान आरजेवीएल जामनेन मानी मिपत पुई कोप्तुर मु इन मिन मु लाउ तिरो निचाए कुंते रन सोई मग थे ए नंग चान मिपा दिक तक के मा अंग चौ ही थांग रो ओ कुंते कुंते अन Kungtian nang chuan mi pa dik tak ke ma ang chau hi thlang ro ron tia ni chuo ni e thang e yang thang e yang chuan el zet sai lo hian vu in lal van iba ngai om le don ve a ron ti ve la min ngai bok lo o vu in nui cha pe bak lo ma la i ngai om thau कनुई थेलो न छन चुसिया उला चान मो मिन शेथियाम खोपंग ओ सोन फिटनेस बॉय हियान बॉस सब सभी ने सभी से बे बढ़कर सभी से बढ़कर खूबसूरत मेरी सनशिपार मोयबेर यस अपने गांव में हम अपने गांव में तुम खुशी से रहना मुझे ना जाने वालों के साथ मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ खुश रहना और मैं भी आपको सबसे बड़ी शुभकामनाएं हमेशा देना चाहूंगी फिटनेस बॉय आपके मैसेज की तरह आपके संदेश की तरह आप भी हमेशा खुश रहना ठीक है यस तो चलिए फिलहाल सुनते हैं अगर तुम साथ होते मेरी तरफ से आप सभी के नाम

वेल दोस्तों, हमारा समय खत्म होने वाला है और आप सभी को यस आखिरी गीत के साथ अलविदा कहने का समय आने वाला है दोस्तों, क्या करें. लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सभी से कि हम जल्द ही फिर से आपसे मिलेंगे FM ZOY 100.7 पर दोस्तों, ठीक है. और आप सभी अपना ख्याल रखना. यस, और दोस्तों, मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए. आप हमेशा हमें संदेश भेजते हैं, हमसे बातें करते हैं और इस तरह हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों. यस, आप सभी से बातें करते हुए, आप सभी के प्यार भरे संदेशों को पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. आप सभी को मतलब पता ही होगा कि आप सभी से बातें करते, आपसे हंसी मजाक करते हुए हमें इतना अच्छा लगता है कि हम समय को भूल जाते हैं कि मतलब हम सब कुछ भुला देते हैं और हमारा समय जल्दी जल्दी चला जाता है आप सभी से बातें करते हुए. तो इसी तरह आप सभी का दिन आप के लिए अच्छे से बीता होगा और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में आप हमेशा ढेर सारी खुशियाँ पाएं. आपको कोई भी मुसीबतें, दुख, बिछड़ना किसी से, ये सब वगैरह वगैरह ना हो. यस, मैं नहीं चाहती दोस्तों कि आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा भी दुख दर्द मिले. यस, मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले. यस, आप जो भी करते हैं आपको अच्छे से, मतलब आपका दिन गुजरे अपने दोस्तों के साथ. तो चलिए, मेरी ख्वाहिशें और उम्मीदें आप सभी के लिए हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लाने के लिए मैं ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी शुभकामनाएं हमेशा ज़िंदगी भर आपके लिए होगा. और यस, इस तरह FM ZOY 100.7 पर आके आपसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बात कभी मत भूलना. और आपका साथ हम हमेशा देते हैं. और यस, मैं जाते जाते एक संदेश पढ़ना चाहूँगी हितेंद्र दास जी की तरफ से. हितेंद्र दास जी ने लिखा है, हेलो आकाशवाणी आइजो स्टेशन FM ZOY 100.7 MHz, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग शो. जान है आकाशवाणी, प्यार है आकाशवाणी, सुबह से रात तक आकाशवाणी, बंधु है आकाशवाणी, लव करता हूँ आकाशवाणी, हर समय आकाशवाणी, बट आज हैवी रेन एंड रेन. तो शायद हितेंद्र दास जी की तरह के जगह बारिश हो रही है, इसलिए वो हमें ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं. पर कोई बात नहीं हितेंद्र दास जी, आप जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो आप हमें सुन पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये FM ZOY 100.7 पूरे 3 बजे तक आपका साथ, 3 बजे तक नहीं, रात के 10:30 बजे तक आपका साथ देगी, ठीक है. यस, बारिश तो होगी लेकिन रुक भी तो जाएगी ना, हमेशा तो बारिश होती नहीं है ना. तो इसीलिए बारिश की तरह कभी दुख आएंगे, लेकिन दुख आने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर आते रहेंगे, ऐसा नहीं है. तो दुख आएंगे तो खुशी भी आएंगी दोस्तों, ठीक है. तो अगर अभी जो आपका समय दुख से भर रहा है वो भरने दीजिए, आगे खुशी आपका इंतज़ार करेगी, ज़रूर करेगी दोस्तों, ठीक है. तो इसी उम्मीद के लिए, यस, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से इस आखिरी गीत के साथ विदा लेना चाहूँगी. तो आरजे वीर की तरफ से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.

0: Hei Akashvani Aizawl FM za oiza point pasari atanga point chua ani windana kan hunwei khatna chu kan lo mang zo ta a program pawng tu hi walal ngei zwali kani a dar thu matang hian kan program hi primary channel in ron chun zo manga ti chuan tlai darli le achan veya kan hunwei hina kan tran le donani weina milonga hlatu zong zong te chunga lom thu kan soya
1: chuan samajar ke sath mai kanak lata राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें पूछा गया है कि पिछले साल एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कितना पालन किया गया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में

नमस्कार, आदार, आभार। आप सभी का स्वागत करती हूँ FM सौ.7 पर। मैं हूँ आपकी आरजे अमोइते। सोमवार की बहुत बहुत ही सुंदर संध्या है इस वक्त, और बारिश बरसात का मौसम चल रहा है इस वक्त, और हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने जगह में सुरक्षित हैं, खुश हैं। चलिए, इस कामना में आप इस कामना के साथ में आप के सामने लाई हूँ तीन फिल्मों के गीत इस खंड पर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट, हम तो मोहब्बत करेगा और कठपुतली। जी हाँ दोस्तों, पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बादलों पे। जी हाँ, आजकल तो बादल कुछ ज़्यादा छा रहे हैं, बरसात का मौसम है, इसलिए चलिए इस गीत के साथ हम इस खंड की शुरुआत करेंगे शान के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज़ में, बादलों पे। फिल्म का नाम है कॉन्ट्रैक्ट।

उम्मीद है हमको ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, जो कि बहुत ही प्यारा गीत होगा और इसी के अंतर्गत आपके संदेश आने लगे हैं, हम उन्हें जरूर जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहला, हेवी रेन एंड रेन, आरजे जी। जी हाँ, हितेंद्र दास जी, यहाँ पे भी हमारा वही हाल है कि लेकिन ज्यादातर घनघोर तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बारिश तो हो ही रही है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह में सुरक्षित हों। और आया है ये संदेश गुड बॉय की तरफ से, जो हमें बहुत ही प्यारा संदेश देते हैं। इसी के अंतर्गत आप सुनेगा इस गीत को, पुन्नु ब्रार और इश्क वेक्टर के आवाजों में है ये गीत, नीले आसमान। गुड बॉय लिखते हैं हमें ताई लम छिपाई लौटी उत्ती कोंगा रोई ना तिबुआई से एम इहुना इहो हुना चुआन थतो तुरा बे से एम ओ इदी उत्ती कलो बे से लुरे गते ओ फान लोम तक एम कवा लोम तक अरोन तिया के पो कलोम लु तुबा। गुड बॉय आपका संदेश बहुत बहुत ही प्यारा संदेश, मैं इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। और हाँ, ये भी कहना चाहूंगी, जब मैं आ रही थी अपने ड्यूटी के लिए तो थोड़ी सी बरसात तो हो ही रही थी, लेकिन उतना भी नहीं कि यहाँ तक आने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। नंगनी पोनी कभी से ओम। तो दोस्तों, सुन रहे हैं आप गीत नीले आसमान।

नीले आसमान पर लिख दूं नाम तेरा, है ना कितना रोमांटिक ये गीत। अगर हो सके तो ये एक चीज है फिक्शन है कि जो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अपनी इंतियां कन मिथला इन हन हे मिथला इन स्वांग तो आना हन तिजोक ते ओ स्वांग तो आना ला अनिया नीले आसमान में लिख दूं तेरा नाम कि मी वान दुम पोल मोय तका ख्यान इमिंग हन जिया के लते ngai om phong mangai om phong phong tiru cute le mai to sandesh ki or jaungi mai ये जो गीत आपने सुना था नीले आसमान कठपुतली फिल्म का गीत था, हमको उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। वे कौन थे हमें लिखते हैं आर जे पे हम थे ngayom pe o tya nang alom le ngayom chu le tro kai mukha kai in bekhat pe tro lo dam that ka be sai ke pon o next ka chang ta ni pa ta no ran tya ran sweet sweet tin tak em o ku te hi zo kan lom em em em और अगला संदेश है अलजत साइलो की तरफ से, कन सुकून लो ले तो दिम त्या वहीं पो कन लो सुकून अब हन इदु उवे चियांग नित्रो है ला ही चु मोई वे पो कनी ओ हुन रिम चांग। अगर होगा हमारे पास समय तो जरूर सुकून होंगे हम और आप। तो चलिए दोस्तों अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनु मल्लिक सुनिधि चौहान की आवाजों में, हम तो मोहब्बत करेगा फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

जी दोस्तों, हम तो मोहब्बत करेगा फिल्म का टाइटल सॉन्ग था ये, और इस फिल्म में है करिश्मा कपूर और सलमान खान। ये जो गीत है, अगर मौका मिले तो जरूर देखेगा यूट्यूब में, मुनम बे थे इलित तो कन्या। उस जमाने में तो इनकी ये दोनों बहुत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे, अभी भी है। और मुनम तो है फिल्म ही, और सुहानी करिश्मा कपूर की भी क्या अदा है। मुनम लुत्तो, कभी देर मौका मिले तो जरूर देखिएगा। बढ़ते अगले गीत की ओर, सुनिधि चौहान की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में गीत सुना रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट फिल्म का, और गीत का टाइटल है आगे, और संदेश है आपके यहाँ पे मिंग मोइते की तरफ से, जो हमें लिखते हैं आरजे मोइते नमस्ते दिव्ती नामने नमस्ते मिंग मोइते या जानिन चु छेंग्स लेंगो। और यहाँ पे संदेश है जे लरेंथले की तरफ से, आरजे हिंदी लाइव प्ले तिन लुगन तिरेंग ने मैं ही आर बी फनु क्लास 12 पास कन लोम हो लम पंग मोटर टंगिनी प्ले ओ leite kan lo ngai thlai o him himi te thian sa ho hi play le tu kha ka lo than sak be ang te ba han lom tak alom tak e o se la o safar ke samay agar geet ko suna jaye fm ko khas karke main kehna chahungi suna jaye to ye waqt kaise bik jata hai pata hi nahi chalta the ro han jin ve papa han ange hangai thak la hangai thak tele fm big takin hangai thak te pei chan te ro nuam te thina ni ke pon dagai kha thin nya bahut bahut shukriya ze lale thian te jong jong in sabai tan khani no agye jo ki the arpit karna chahungi।

रह गया है। ज्यादा गीत नहीं सुना पाऊंगी आपको, ज्यादा से ज्यादा गीत सुनाना चाहती थी मैं। एल जे साइलो तब जे मेलो रिले वे अरो अलो रिले वे माई बोका अधिक छात्र तो पारन रिवेले मई जेल बोका। तो अगला गीत मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा और सुंदर गीत है तेरो एल जे साइलो मोई डॉन तेरो। तो अब से थोड़ी देर बाद आप अपना वक्त बिताएंगे अपने आरजे रिम्पुई के साथ। हम वापस आएंगे 7:30 बजे बहुत बहुत ही सुंदर फिल्मी गीतों के साथ। कहीं मत जाएगा, ट्यून में रहेगा, एक भी खन आपसे छूट ना जाए। हमें आपके संदेशों का हमेशा अपने पूरे खंड में इंतजार रहेगा। और जाने से पहले एक और गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा गीत, सुकून सुकून भरी जिंदगी। तिरु तो चलिए दोस्तों सुनते हैं हम और आप।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम जो 100.7 पर। आज हम मोहित आपके साथ अपनी दूसरी खंड में। और दोस्तों, इस खंड में मैं आपको सुना रही हूँ तीन फिल्मों के गीत। पहला गीत आप जो सुन रहे हैं, परी हूँ मैं फिल्म का गीत है और गीत का टाइटल है केसरिया। सुनीता राव की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में केसरिया जो है कि 2018 का फिल्म है। और मैं इस फिल्म के बारे में आपको जरा सा बताना चाहूंगी। ये परी हूँ मैं साजरी की कहानी है, जो एक प्रतिभाशाली उज्जवल और मासूम लड़की है। वो मध्यम वर्ग के मराठी परिवार से संबंधित है और उसे सौभाग्य से छोटी से उम्र में ही स्पॉट करने का मौका मिलता है, जो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को फिर से जीवन कर देता है। लेकिन दिघे परिवार के जीवन में नियति की अलग भूमिका होती है। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा फिल्म को। हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे भी। फिर सुनते हैं अगले गीत की ओर। इस फिल्म का, उससे पहले इस फिल्म का जो निर्देशक है वो रोहित शिलवंत है और स्टार से श्रुति निगड़े, नंदू माधव, देविका दफ्तादर। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। जो मैं अगला गीत सुनाने जा रही हूँ, जिंदा दिल। जिंदा दिल फिल्म का गीत सुनाऊंगी। इस खंड में तीन फिल्म है, जो कि है एक परी हूं मैं, दूसरा जिंदा दिल और तीसरा सावन। तो चलिए, अगला गीत जो मैं आपको सुना रही हूँ, 2003 का रोमांटिक फिल्म का एक बहुत ही सुंदर गीत है, आगे आगे तुम पीछे पीछे हम, अलका याग्निक की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में।

सुन रहे जिंदा दिल जो कि 2003 का रोमांटिक एक्शन मूवी। इस गीत में जो आवाज़ है अलका याग्निक की है, बहुत ही सुरीली और सुंदर रोमांटिक है इनकी आवाज़। हमको उम्मीद है आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है जो मांगी खुदा से, सावन फिल्म का गीत है और हमें आशा है कि आपको भी ये जरूर पसंद आए। इसी अंतर्गत हितेंद्र दास का संदेश है, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र दास असम से है। तो गीत जो है ये भी हम आपके भी नाम करते, सावन का महीना चल रहा है, तो चलिए जो मांगी खुदा से, क्या खुदा से।

तो ये थी दोस्तों जो मांगी खुदा से, फिल्म है सावन। हम बढ़ते अगले गीत की ओर। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुनीता राव की बहुत ही सुंदर आवाज में है, तेरे बिना। और जी

हेना सुरीले दस्तो गीत यति सुनिताराओ की आवाज में तेरे बिना। बढ़ते अगले गीत की ओर, जिंदा दिल। जी हाँ, सा जिंदा दिल फिल्म का एक और गीत सुनाऊंगी आपको, एक मासूम सा चेहरा। चलिए इस गीत को हम अर्पित करना चाहेंगे हमारे श्रोताएं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। हमें अपना पूरा ध्यान हमारी ओर लगा दीजिए। चलिए इस गीत के साथ अपने मनोरंजन को और भरपूर कर देते हैं।

एक मासूम सा चेहरा, दिल वही ठहरा है एक मासूम चेहरे पर। मैं मासूम चेहरे का मतलब शायद हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे। मासूम सा चेहरा आती हूँ जो मासूम चु गई नौ बे पोई सोई लो चेहरा चु मेल दीनानिया दिखा चवानी ना मिजो टों अजो टोंगन मोई तका हनले छुआ थियम हकन उम हाल करेंगे तो एक मासूम सा चेहरा वो मुझे प्यारा लगे। का थिन लुंग ने एम तू कदु एम चू खा मेल ngai no pe tak kha ani tiang ten ti ve mi don mi ka le thiam ve thau tro pa nga ka sandesh e ye ha meri tyar je hite i le mi dang then kha te nen kan no ngai tha chau ye ati a meri awaz ki bhi tari bahut bahut shukriya te i le mi dang te le o pa nga te mi no ngai cha tu zong zong te khag lagi tap sabhi sabhi ke naam। तो दोस्तों अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे दिल को दिल की, कुमार सानू के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में है ये गीत। और हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, केवल 5 मिनट रह गया है और ये जो गीत मैं आपको सुना रही हूँ पूरे 6 मिनट का है। तो मतलब है कि इस केवल यही गीत आपको सुना पाऊंगी। मिनल अहमद जो गीत सुनने की फरमाइश की है आपने, शायद इस खंड में तो ना सुना पाऊं, लेकिन हमारे आज रात की जो तीसरा नहीं चौथा खंड है हिंदी का जो कि 10 बजे है उसमें फिर से मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? अगर होगा हमारे सिस्टम में तो जरूर जरूर प्ले करेंगे। चलिए जो गीत है आप सभी सभी के नाम जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, खास करके जिन्होंने हमें संदेश दिया अपने प्यारे प्यारे आप सभी के।

दिल को दिल की धड़कन को कुमार सानू के आवाज में है। तो आपसे थोड़ी देर बाद आप अपना वक्त बिताएंगे अपने अर्जय सैनी के साथ, अंग्रेजी की बहुत बहुत ही सुंदर गीतों के साथ वो वापस आने वाले हैं और हम हमारी और आपकी फिर से बातें होगी 8:30 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी अपने चॉइस के गीत।

हेलो, नमस्कार, आदाब. आप सभी का स्वागत करती हूँ FM जो वॉइस ऑफ द समलव सात पर. आरजे मोहिते आपके साथ है अपनी तीसरी खंड पर, और मैं इसमें इस खंड में सुनाने वाली हूँ अपने पसंदीदा गीत. तो दोस्तों, पहला गीत मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, आपकी आरजे की जो पहला चॉइस है वो है आवन जावन. वो सीरीज टू फिल्म का गीत है. इसमें ऋतिक रोशन है, कियारा है, और आवाजें हैं प्रीतम, अरिजीत सिंह, निकिता के. हाँ जी हाँ, फिलहाल अमिताभ की भी आवाज है इसमें.

तो दोस्तों कैसा लगा आपको अपनी आरजे की पहला चॉइस, जरूर बता दीजिएगा अपने संदेशों के द्वारा। ये है आवन जावन अभिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाजों में, आवन जावन वर्ल्ड सीरीज 2 फिल्म का गीत था। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की और हमारा अगला चॉइस है, इस गीत को तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्या करूं जब

सुनती हूँ ना, कभी तंग नहीं आती। मन करता है कि हमेशा बार बार यही गीत सुनूं। तो चलिए दोस्तों, सनम पुरी के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में सनम पुरी और जो इनता

तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे हम ज्या ही कंशेविक लव मई थया इलकता एंटिंगे ओ मोरो मोइदे मिन फुआकन तुमा टोंकम थियामिना दैतासी लमान थे क एन क थिर निंग थेलो जे दिन ओ शॉर्टकट टप मे यंग ओ तो दोस्तों जो गीत आपने सुना था सनम पुरी और जोनिता गांधी के बहुत बहुत ही सुंदर आवाजों में थी, तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे। अगला गीत जो मैं आपको सुना रही हूँ आज रात, जो मैं गीत आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत बहुत ही अलग है और बहुत अपने जमाने में, अपने जमाने के अपने उन दिनों में बहुत बहुत ही फेमस थे। तो अगला गीत है नचड़ी फिरा, सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म का गीत है ये, और इसमें है आमिर खान और जयरा वसीम अमित त्रिवेदी कौशल। चलिए गीत सुनते हैं नचड़ी फिरा, और इस गीत के गायक है मेघना मिश्रा।

कैसा लगा आपको गीत हमारा नजदी फेड़ा, सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म का गीत था। हितेंद्र दास ने लिखा है कि वेरी वेरी नाइस माय आकाशवाणी माय फ्रेंड हितेंद्र दास, स्वागतम स्वागतम आपका। और सारा गीत जो है वो भी आपके नाम करना चाहूंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारे अगले चॉइस की ओर। जी हाँ, ये जो गीत है मुझे उम्मीद है ये भी आपको, आप सभी को जरूर जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस गीत को सुनकर ही अगर भावुक ना हो गए तो हमारा नाम भी आरजे मोहिती तिरंगा तंग। अपनी माँ की याद दिलाते आप सभी को उन दिनों का, जब बचपन में, कोई बचपन में या फिर कोई बड़े होने के बाद, या जब भी किसी को हॉस्टल में रखा जाता है, बोर्डिंग में रखा जाता है, तो कैसा फीलिंग होता है। इससे, इस गीत से चलिए उन दिनों की याद दिलाते आपको माँ। तारे

कितना सुंदर है ये गीत, और हाँ बहुत भावुक भी है। चलिए दोस्तों, अगला जो मेरा चॉइस का गीत है, ये जो गीत है मैं भी बचपन में बहुत ही एंजॉय किया करती थी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत है, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी है और छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं। अब मोनम तो फे फिल्म है इन ला इन वेर ओ मिस्टर इंडिया तिखान, यहाँ अनिल कपूर ते चन्ना मोनम तो कॉमेडी पो अमा मासे इंगे है इमोशनल बोका। अब मोनम तो पनी जो तो इसकी का टाइटल है जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, मतलब कि हे कन्नुना यानिन लोथिन चांग पो कन ने या चोन लो छम चांग ते पो कन ने थिन नि नुन हि इंग टिक लाइ पो हे नंगाई रिंग लो अनि किरो। तो चलिए, अनिल कपूर है इसमें श्रीदेवी, जिसमें वो अपने एक अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगता है, और साथ में उनको पैसे की जरूरत होती है, तो क्या होता है श्रीदेवी का इन लेलम खा रूम पखत खा लुआती खा लुआती रहा था, श्रीदेवी का नौ पंगई ना लो देव खा लो निशिया।

voina kan lo in then ta ni po in nak to ka chuanin kanom ho le anga kan thin rim ani po in nak to ka chuanin kanin ngei le dial dial don ani atini zindagi ki yahi reet hai humko umeed hai aapko zarur zarur pasand aaya hoga chaliye dosto ye thi aapke rj ki choice chaliye agla choice ka geet sunati hu mujhe ye umeed hai ye geet bhi aapko zarur zarur pasand aayega aur main kehna bhi chahungi ki ye jo mera khand hai jo geet sunane ja rahi hu is khand ka aakhri geet hoga hum wapas aayenge 10 baje bahut aur bhi bahut bahut hi sundar filmi geeton ke sath तो चलिए दोस्तों गीत सुना रही हूँ आपको मन फिल्म का आमिर खान और मनीषा कोइराला है इस फिल्म में उदित नारायण के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में और दुर्गेश नगनपुरे और फैमिली के तरफ से है गुड इवनिंग आरजे सिस्टर नमस्कार नमस्कार दुर्गेश आपके और आपके परिवारों को चलिए ये जो गीत है आप सभी परिवारों के नाम और जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे संदेश दिए है आप सभी सभी के नाम तो 10 बजे हम वापस आएंगे कहीं मत जाएगा और भी सुंदर फिल्मी गीतों के साथ

हेलो नमस्कार सभी का स्वागत करती हूँ एफएम जो 100.7 पर आरजे मोइते आपके साथ है अपनी आखिरी खंड में। दोस्तों ये जो खंड है हमारा इस ट्रांसमिशन का आखिरी खंड होगा और हमको उम्मीद है कि आप सब हमें इस वक्त सुन रहे हैं। जो हमें सुन रहे हैं आप सभी के नाम करना चाहूंगी। इस वक्त शायद कोई अपने सफर में होंगे, कोई अपने घर में बिस्तर में हमें सुन रहे होंगे। आप सभी सभी के नाम, और जो भी कोई इस वक्त अस्पताल में है, मरीज है, डॉक्टर है, नर्स है, आप सभी के नाम, और जो हमारे सिक्योरिटीज है, हमारे

Peri galia omzia chu i om naveng khwa street soina ani teri galia dosto ye fm ek villain ka बर्थडे हमारे अगले अगले गीत की और हाँ दोस्तों, मैंने पहले से बताना भूल गई कि इस खंड में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गीतों का कलेक्शन, फिल्मों के का कलेक्शन, एक ही फिल्म नहीं अलग अलग फिल्मों के गीतों का कलेक्शन है इस खंड में। तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लाइफ इन मेट्रो फिल्म का गीत है ये। इन दिनों इस फिल्म में है कंगना रनौत और शिल्पा शेट्टी कंगना। यहाँ पे संदेश आया है लल दिनपु यफल कौन वेंगलाई की तरफ से, जो हमें लिखते आरजे तुआंग तक हो दो इप्ले ले तु का नम्मा तान लिया उलिया और तीन दिनपु का भन लोम एम एम छीन तक एम। अगला गीत भी हम आपके भी नाम करते हैं।

0: Why am I behaving like a teenager? मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ?
1: शिखा,

0: हाय
1: हाय,
0: आज आप जल्दी निकल गए।
1: आपको कैसे पता?
0: विजिटर्स बुक। आज हम भी आपकी नगरी की तरफ जा रहे हैं, अंधेरी।
1: अच्छा,
0: तो चलें।
1: मैं लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती हूँ।
0: नो प्रॉब्लम।
1: नो प्रॉब्लम, उसमें ट्रैवल करने के लिए आपको औरत बनना पड़ेगा।
0: तो फिर जनरल कंपार्टमेंट में चलते हैं, उसके लिए आपको मर्द नहीं होना पड़ेगा।

जब तक गीत सुनते हैं आप, आपके संदेश की ओर मैं ध्यान देना चाहूंगी। जॉन गस्बो ने बहुत ही प्यारा गीत लिखा है, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहा, लौट के आना है यही तुमको, चुआंग तकिन होला निक्स इताना रुंतीनी। अब हम तुम बोंग बोंग चीन तक ओ जॉन गस्बो कन भाई तुम खात बेत्रो एकदम ठतूरा कंगाई चुआंग चुआंग तक हो तुरिन मिंतिया ओ चुआंग तकिन हो तुरिन आयन ओ नंगपो लोदम जेल दोनिया। और यहाँ पे आए हैं दुर्गेश नगनपुरे का और लिखते हैं गुड इवनिंग आरजे सिस्टर, नमस्कार नमस्कार। और इन्हें लिखते हैं, इन्होंने श्रोताओं के नाम लिखा है, दुर्गेश नगनपुरे, राधे श्याम नगनपुरे, वंदना भवना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे, ग्राम जसवारी डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश से। अरे वाह, इतना दूर से हमें सुन रहे, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपके और आपके सारे साथियों के नाम। करते हैं अगले गीत को। तो दोस्तों जो बढ़ते हमारे अगले गीत की ओर, इश्क मुबारक तुम बिन सीरीज टू फिल्म का गीत सुनाऊंगी आपको।

आप सुन रहे हैं FM 100.7 में हूँ आपकी आरजे अमोईती अपनी आखिरी खंड पर। दोस्तों, ये जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे इस खंड और इस ट्रांसमिशन का आखिरी गीत होगा। तो जाने से पहले आपके एक और गीत सुनाकर जाऊंगी। हेट स्टोरी सीरीज 2 फिल्म का गीत है हाँ ये दिल मेरा, आप सभी सभी के नाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। हे कन स्टूडियो इना छुंग आ हिचोन पोना रवा सुर ने सुर लो पोस्ट या तोमा सुर अंग याने इनसिया का सुर ने सत्फे चोन इन होखा हर दे उदोन वकते लो। तो अब दुआ कीजिए कि हम फिर सुरक्षित अपने घर में पहुंचे और आप भी अपने जगह में सुरक्षित हो। तो जाने से पहले ये गीत आप सभी के नाम, शुभ रात्रि।